0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम हिन्डो लक्टेर हटबरा पानी बस्त बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दाए त सोचो त लट्टी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम लट्टी ठिक्कम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बल्ली
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाई लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

0: सहज गर्जन छ सधैँ भाग
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम अहिले बिहानको 8 बजेको छ। यस टाइम चेकका साथमा केपी पोली क्लिनिक भृगा बजार बर्दिया।
2: ए रामलौटन भाइ के गर्दैछौ?
3: नमस्कार सुरेश दाई, यत्तिकै बसेको, आउनुहोस् चिया पिउन। छोरी
4: हजुर
3: जाऊ त, 2 गिलास चिया बनाएर ल्याऊ।
4: हस् बाबा।
2: छोरी त ठुली भइसिन्, कति वर्ष कि पुगिन्?
3: 21 वर्ष कि पुगिन्, अब बिहे गर्ने उमेर पनि भयो। कोही असल केटा छ भने यसो कुरा चलाउनु पर्यो दाई।
2: ए त्यसो हो भने पल्लो गाउँमा विष्णुको छोरा छन् नि, कि एकपल्ट कुरा चलाऊ त।
3: केटाको बानी व्यवहार राम्रो छ भने कुरा चलाउनुहोस् न त। तर केही दिन अघि स्वास्थ्य कर्मीले थारू जातिमा खै के रोग देखिएको छ, पहिला चेक जाँच गराएपछि मात्रै विवाह गर्दा जन्मिने सन्तानलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेका थिए। यसबारे बुझेर मात्रै बिहेको कुरा गरौ कि?
2: तिमीले ठिक कुरा गर्यौ। अरू जातिमा भन्दा हाम्रो जातिमा सिकल सेल एनिमिया रोगको संक्रमण धेरै देखिएको छ। यो रोग भएको व्यक्तिले अर्को यही रोग भएको व्यक्तिसँग विवाह गर्यो भने उनीहरूको सन्ततिमा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ रे।
3: ए कुरा त्यस्तो पो हो, अब त्यो कसरी थाहा पाउने त दाई?
2: ल सुन, विवाह गर्नुभन्दा पहिला केटाकेटी दुवैजनाको सिकल सेल एनिमिया रोग अनिवार्य चेक जाँच गराउनु पर्दछ र यो रोग सन्ततिमा लाग्नबाट रोक्न सकिन्छ।
3: ओहो, धेरै कुरा सिकाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। छोरीलाई आजै सिकल सेल एनिमिया जाँचका लागि अस्पताल लिएर जान्छु।
5: समयमै सिकल सेल एनिमिया रोगलाई पहिचान गरेर मात्र विवाह गरियो भने आफ्ना छोरा छोरीमा यो रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसैले सिकल सेल एनिमिया अनिवार्य जचाउनुहोस्।
0: ठाकुरबाबा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: होइन त्यहाँ के को भिड लागेको छ के त्यस्तो? जम्मै मान्छे त्यतै गइरहेछन् त।
7: ल साल दिदी पनि, सबै सामान एकै ठाउँमा पाइने अल पसल भएपछि अनि भिड लाग्दैन त?
6: हामी कहाँ दैनिक उपभोग्यका सम्पूर्ण सामग्री, चिसो पेय पदार्थका सामानहरू, कस्मेटिकका सामानहरू लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने जानकारी गराउँदछौ। सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल भएको अल पसलको शाखा अब भुडिका बजार बर्दियामा। अल पसल ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 कञ्चनपुर जाने बाटो भुडिका बर्दिया। प्रोप्राइटर हेमराज आचार्य, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974।
8: जीत पुरवाली, यह साल तो निश्चिंत हुई गवा गए।
9: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागल था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
8: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गया।
10: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवा बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
11: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
1: यो हो रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो टाइगर 99 थप्लो 2 मेगाहर्ज दर्जन छ सधैं बाघझैं
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

आ गए आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

मैं इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू मैं लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तुम माने या न माने।

0: हुन्छ नि राहुल आज त्यति पनि
1: ए राहुल त यहाँ नै अनि भोलि पनि जाउँ पनि दो मिनट बारिस के हुने भने यार कहाँ पो जाँदा ढुङ्गो के
0: ओ गॉड मैं अभी आया सुति सुति राहुल मिला क्या
2: नहीं मिला
3: मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर